हमारी जय बा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम बड अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कहिया तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया कमन गुण कहिया जेबा एक तू समर्थ बड़ा मेरी मत छोरी मेरी मत छोरी हम अज्ञान अल्प मत छोरी तू सम

वटी हूँ बता अदार तेरा मर्दबा, वटी हूँ बता अदार तेरा मर्दबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा दे अंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को

0: जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श ले हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे आने हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाहा, सत संगत हर मेल प्रभु हम पापी संगत रहा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुत्ते मेल मिला,
1: हर कृपा कर सुन बेनती।

वेद बाणी सहत ब्रंत जस गावे जम को शिव मन गहना तजात कबिलास को जानको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिम सतगुर सुख भाए।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणता और तिस

गुरु साजी दिवाजी सात संग जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

पूरे सतगुरु जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरुमतंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है हुण ताल बदल गया इस नु असीं दीप चंदी कहने हैं 14 सुर मात्र का ताल है ताल बदल गया है इस नु पड़ताल कहांगे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

नक्षत्र वीणा का एक स्वर है दीन, तिरना जो है ये सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजदा है और दीन जड़ा है विचित्र वीणा में वजदा है, ये साजां दे विच दर्शन कराए ने।

आने हाथों बाबा जी नंद सरोवर पाती हो सरोवर सुंदर पाती हो दुग्रों संताप उत्तर धुनी राजी बाणी

गुण गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दो दाई दया खेले धर्म आपो अपनी सर जपो जिन्नी नाम जय मसक नानक।

0: आदि गुरुये नमः जुगाद गुरुये सतगुरु
1: श्री गुरुदेव
0: गुरु बापे फिटके से फिटे गुरु बापे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते कुआरे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी चिकिया गुर चौथी पीढ़ी चिकिया जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहान निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

हमारी जेबा एक ग्राम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

वट्टी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा, वट्टी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो स्थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो स्थान, तेरो स्थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, किस पापी को मिले न सोई, किस पापी को मिले न सोई, शरण आवे दान।

मणिपुर के लोग बसेंगे तेईस रहनी रहे सोई दिल मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरह

सब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इसका मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर चुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज के।

हजूर कहने लगे ओए कोड़ियो तुहानू कोड़ निकलेगा तुसी मेरे गुरु नानक दे शान दे विच ऐसे बोल कबूल बोले ने और उथो वापस आ गए। एकदम वापस हो तुरे जदों आए दरबार विच संगतां उड़ीकदियां पईयां सोचदियां पईयां शायद गुरु पातशाही दा बचन ते मन लैणगे पर वेख्या उन्होंने हजूर दा बचन भी ना मनिया। गुरु अर्जन देव पातशाह शांत चित मूरत सतगुरु निर्मलता दे सागर सतगुरु सहज अवस्था विच आके टिक गए अपने आसन ते। अखां मीटियां हुईयां ने संगतां हुण सोचदियां ने कि हजूर हुण की बचन फरमान लगे ने। उन्हां दे मुखार बिंद वल तक रहियां ने संगतां हजूर दे नैण खुले आखण लगे गुरु की साध संगत ओते अहंकारे गए ने ओते फिट गए ने ते गुरु घरों फिटकारे होए उन्हां नूं कोई मूह ना लगावे जेड़ा मूह लगाएगा ओदा मूह असी काला करांगे। और साध संगत आओ अज मेरे उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी ए बख्शिश झोलियां पसार के सारे ही अज प्राप्त करो। अज तो बाद हर गुरु का सिख हर गुरसिख माई भाई गुरु का कीर्तन करेगा। हजूर ने कहंदे ने आप सरंदा लिया और अपने मिठ बोले गले तो मिठास भरे गले तो इलाही नाद गुरबाणी कीर्तन उच्चारण कीता ते संगतां नूं आख्या आओ साध संगत जी रल के कीर्तन करिए। ए है मेरे गुरु दी बख्शिश जो अज हर गुरु का सिख माई भाई बिरद बच्चा गुरु का कीर्तन कर सकता है बिना किसी भेदभाव तो कीर्तन करता है। शायद जे किधरे गुरु पातशाह ए बख्शिश ना कर दे सत्ता ते बलवंड नू किधरे अहंकार ना आउंदा ए बख्शिश आपा सारियां नू कित्थों प्राप्त होनी सी। ए ही हाल होना सी जिवें हजूर गुरु रामदास पातशाह

हंस हंस के कितने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि पड़क उठे, पर उन्हां नूं की पता सी

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा हौ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने यह रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू ए वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहुंदी सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज़ के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे। उस सच दी आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुल्म करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नीह रखण लगिया, हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ए शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनन दा संदेश

0: लुटा उमलों राफत का उफका खुला है, मगर एक ही बात में फैसला है।
1: कहने लगी ओ केड़ी गल है,
0: महाआत्मा कोई हो जाए कुर्बान, महाआत्मा कोई हो जाए कुर्बान, तो भारत की मुश्किल हो जाए ऐसा, तो भारत की मुश्किल हो जाए ऐसा। बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो,
1: गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे दसो भाई ऐसा कोई है।
0: बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो, जो इंसान के जामे में परमात्मा हो, ना जिसको गुनाहों का धब्बा लगा हो, खुशी से जो अपने वतन पे फिदा हो, खुशी से जो अपने वतन पे फिदा हो।
1: सारिया ने सिर नीवे कर ले, कोई जवाब ना मिले या। ते पास गोविंद राय जी बैठे सन, कहन लगे पिता जी मैं भी कुछ अर्ज करा।
0: कहा गोविंद राय दस्ते बस्ता, सुनो ऐ पिता महाराज किवला, सिवा आपके कौन धर्मात्मा है। अगर

जे तू कुछ भी नहीं कर सकता तो जपन वालियां दी संगत कर, क्योंकि उना कोल जाके बैठेगा ते उना दी संगत विच तू भी आखेगा सतनाम श्री वाहिगुरु। ते तेरे मुख तो निकलिया होया वाहिगुरु तेरे लखां पाप कट देवेगा। पाप भले पुरखां दी संगत करेगा तो फायदे विच रहेगा, ते जे माड़े पुरखां दी संगत करेगा तो नरकां दा भागी बनेगा। इस दंपति जोड़े ने आख्या महाराज गरीबी दे कारण असी बहुत दुखी हैं। बाबा जी ने आख्या फिर की चाहिदा है? महाराज दो वेले दा सोना खानन पहनन नू मिल जवे ता कुटान कुटान शुक्र है। बाबा जी ने आख्या भी सुखमनी पढ़िया कर, सुखमनी सुखां दी दाती है। इस विच 24,000 अखर ने ते 24,000 सुवास प्राणी नित दे लैंदे। जेकर एक पाठ भी शरदा नाल कर लवे ता 24,000 सुवास लेखे विच आ जांदे ने। इन्हां ने हाथ जोड़ के

मेरी तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इना ने आख्या महाराज जिवें आप नू भावे। बाबा जी ने उस जोड़े

अलपग हां कुछ समझ नहीं लगी। आखिया जिवे गड्डे दे हेठां दोने पहियां दे विचाले तुरा होंदा है ना, इस तरह आपा तुरा

नाम पानी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत बचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ या पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज करदे हो ना, हुण लगातार सुखमनी

सुचेत होके नाम बाणी दा प्रवाह चलाया करो। ता उदो दा श्री सुखमनी साहिब दे पाठ, श्री अखंड पाठ, ब्यंत बाणी दे प्रवाह श्री नानक सर विखे चल रहे ने। संगतां आके अपनियां अरदासां कर दियां ने, बाबा जी दियां खुशियां लैंदियां।

ताकीद करदे सन बई रब नूं विसरिया होया कि रब नूं चेते रखे। जे आखना बाबा जी विसरिया ता कहना बई हुण समें नूं संभाल ले, चेते कर ले, क्योंकि मां पुरखां नूं कोई स्वार्थ नहीं हुंदा, कोई लालच नहीं हुंदा। उन्हां नूं ता आए दी खुशी नहीं हुंदी, गए दा गम नहीं हुंदा। ओ ता केवल निरंकार नाल जोड़दे उन्हां पूर्णियां ते फिर बाबा ईश्वर सिंह जी चले। 13 वरियां दे निक्के जे समें अंदर बाबा ईश्वर सिंह जी ने 7 लख प्राणियां नूं अमृत छकाया, क्योंकि जोत ता बाबा नंद सिंह जी दी महाराज दी ही सी ना। 7 लख प्राणियां नूं गुरु वाले बना दिता। जदों आप पटने विच गए ते सरदार बख्शी सिंह ने अरदास कीती, बाबा जी थोड़े दिन होर रुको। ए बड़ा अमीर सी, धन दौलत दी परवाह नहीं सी। ते बाबा जी ने भी मुस्कुरा के आख्या भी जे रुकना है 2-4 दिन रुकांगे, पर भेटा लगेगी। इन्हें मन विच सोचिया 50,000 रुपया दे देवांगा। बाबा जी हिरदे दी पट्टी वाच गए ते कहन लगे भी ये ता थोड़ी है। फिर मन विच कहंदा 1 लख रुपया दे देंगा, उस वेले 1 लख बहुत हुंदा सी। ते बाबा जी ने फिर आख्या भी पेटा थोड़ी है, मां पुरखो जो मंगोगे देवांगा।

दुनिया दे महापुरख आए, कोई पैसे लै गया, सेवा लै गया, माया लै गया, पर ऐसे महापुरख जिन्हां ने मेनू तारन दा सोचिया ता चरना ते गिरिया महाराज बख्श लो, ता इसने भी अमृत छकिया ते होर इसनू देख के हजारा संगतां ने अमृत छकिया। ए सन बाबा जी दे तारन दे ढंग, नाम जपावण दे निराले ढंग सन बाबा जी दे। जो कोई भी आउंदा उसनू नाम जपाउण दे, ताई ता अज नाम जपिया, जिथे बैसन साध जन सो

संसार विच नित अवतार होंदे ने ते भुले भटके लोगां नू मुड़ समत ला के वाहिगुरु नल जोड़दे ने। ऐसे महापुरुषां दी

जेकर किधरे मन ने कह भी देना मैं अज नाम नहीं जपना ते बाबा जी ने खुद ही डार उत्ते जा बैठना खुद ही बनी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा सोवेगा आलस करेगा ते फिर तू खूह विच गिरेगा ते मर जावेगा ऐसा डर पाके मन नू निरंकार नाल जोड़ना बाबा जी 12:10 ते नितनेम विच आ जांदे सन ते 12:10 ते जदो आपने सिमरन करना तां कलयुग ने नींदर नू भेजना भी जा इन्हां नू नाम ना जपन दे ते बाबा जी ने केसा नू किली नाल बन लेना आखना जदो नींद आवेगी ता केस खिचे जावणगे ते दर्द होवेगा ता मैं फिर उठ के नाम जपन लग जांगा साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु क्योंकि नाम जपन वाले हर वेले यही अरदास करदे हन निरंकार ना विसरी ना विसारी आप दयानु आप दे करी इस तरह अनेकां ही रूहां नू आप भी जपिया बाबा जी ने ते दुनिया तो भी जपा

नवा शुरू करने लगे सा सोचिया दर्शन कर आईए। ते फिर इन्हां ने हाथ जोड़ के बेनती की, बाबा जी की करिए, नितनेम दा वेला ही नहीं मिलता। ता बाबा जी ने आख्या, सरदार बूटा सिंह ते सरदार रोड़ सिंह नू आख्या, बई गुरमुखाओ, जे नाम जपन दा वेला नहीं मिलता ता तुहानू सोखी जुगती दस देने। बाबा जी ओ केड़ी आख्या, जदो टेस्टा चलाउंदे हो तां मुख नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे रहा करो, जदो लकड़ उपर आरी चलाउंदे हो तां रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे रहा करो। आरी लकड़ नूं कटेगी ते रसना तो जपिया होया वाहिगुरु तुहाडे पापां नूं कटेगा। साध संगत बोलो श्री

0: गुरु साहिब जी का अपना ही परम पवित्र तन मन थन पिंड प्राण जाहो जलाल तुझको इत शाम इष्ट रूप निष्ठा अलकिस्सा गुरु महाराज जी का परम पवित्र हिरदा ते अपना ही रूप गुरु खालसा सात संगत माई भाई जीओ प्यार सत्कार उत्साह उमा जाओ शौ चाओ उमाह नाल संपूर्ण फतेह गजानो जी वाहिगुरु का जितनी दास ने प्रेरणा शब्दों द्वारा दिती है मेरी तसली ने हुई एक बार फिर उचारो
1: वाहिगुरु का
0: इनी फतेह का उत्तर तैयार जे मैं एको बारी कहना खालसा जी बजाओ फतेह तो इन्नी कमजोरी नाल दिंदे तां बजा सी मैं तो बड़े शब्दों की भरमार नाल अलकाबो आदाब नाल आप जी नूं इल्तिजा कीती सी तो एक बारी फिर कृपालता करो उच्चारण करो जी
1: वाहिगुरु जी का खालसा
0: लख लख वधाइयां होवन आप जी नूं अपने ही पवित्र प्रकाश दिन दियां कोतान कोट मुबारक होवन सृष्टि के कोने कोने अंदर सुशोभित गुरु नानक नाम लेवा नूं अज दी पवित्र वैसाखी दियां अनंत बेअंत खुशियां मुसरतां शादमानियां ते मुबारक होवन दीन दुनिया लोक परलोक ते सूक्ष्म आत्मावां जो सचखंड विच वस रहियां ने उन्हां नूं इस पवित्र वैसाखी दियां जिसने